0: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात. हिंदी बातम्या दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करत आहोत काही क्षणात.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे. ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है.
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं. दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है. 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए. इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की. इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे. इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची. ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है. देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है.

0: इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेब्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। ऐकूया कार्यक्रम मंगल प्रभात। श्री वैशंपायन गुरुजी यांच्या आवाजात ऐकूया श्री दत्तात्रेय स्तोत्र।
2: श्रीपादश्रीवल्लभश्री नृसिंहसरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः। दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणं सर्वरक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणं नारायणविभुं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु सर्वानर्थहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनं भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु शोषणं पापपङ्कस्यो दीपनं ज्ञानतेजसः तापः प्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु सर्वरोगप्रशमनं सर्वरीडानिवारणं आपदुद्धरणं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु जन्मसंसारबन्धघ्नं स्वरूपानन्ददायकं निःश्रेयसकरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु जयलाभयशः काम दातुर्दत्तस्य यस्तवं भोगमोक्षप्रदस्येवं प्रपठेत् स कृती भवेत् इति श्रीजयलाभाधिकरं श्रीदत्तस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: वैशंपायन गुरुजी यांच्या आवाजात श्री दत्तात्रेय स्तोत्र आत्ताच आपण ऐकलं। मंगल प्रभात कार्यक्रमात यानंतर मिलिंद जोग यांनी गायलेली पंत बाळे कुंद्री महाराज यांची ही रचना।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचना 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन

0: वैशाली सामंत यांनी गायलेल्या या गीतासोबतच भावधारा कार्यक्रम इथेच समाप्त होत आहे. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर या ऍपसहित आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 8 वाजत आहेत, ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात, 8:15 वाजता मॉर्निंग न्यूज, दोन्ही बातमीपत्र दिल्ली केंद्र.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की. फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे. ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है.
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी. इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है. वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई. इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है. इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं. दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं. सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे. ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे. भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई. 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है. ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है. नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी. इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है.

0: योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
5: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Sekya, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Railway, I beg your pardon, for the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. More from our correspondent.
6: The sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. Sources said there are concerns that the feature may increase incidence of online frauds, phishing, digital arrest, scams, and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. The sources further said that the ministry has directed Meta to furnish a detailed explanation on this feature within 3 days and not roll out the feature until consultation on the matter is over. Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
4: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 28th of February to curb seasonal air pollution in the national capital. We have a report.
7: Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited. The government has also announced that parking charges at authorized parking facilities will be doubled from 1st November to 28th February, while 50% of employees in government and private offices will work from home from 1st November to 31st January. Demolition work and open dust generating construction activities will remain prohibited from 1st November to 31st January, except for essential public infrastructure projects. Large commercial buildings and major construction sites will be required to install anti-smog guns with Suparna and Arzu. Chirag Jha from News Desk.
4: The government has given 1 year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till 14th of July next year. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on 15th July 2024. He was India's ambassador to China from January 2019 to December 2021. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August 28. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. The Yatra takes place via the traditional 48-kilometre Nunban Pehelgram route in Anantnag district and the shorter 14-kilometre Baltal route in Gandharbal district. The centre has assured full support to Assam in dealing with the recent flood situation. The assurance was given by Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Union Minister for Parliamentary Affairs Kiran Rijiju during a flood review meeting with the Assam government in Guwahati last evening. The Union Ministers reviewed the latest flood situation in Assam, including in the worst affected district of Dhemaji, and assessed the preliminary extent of the damage. Assam Chief Secretary Ravi Kota informed the Union Ministers that 13 districts have been affected by this year's first major flood, impacting around 72,000 people. The India Meteorological Department IMD has said southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 days. The Met Department has also forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra during the next 2 days. People in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing much-needed relief from the sweltering heat.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. श्रोते हो, सकाळचे 11:05 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम स्वरसंवाद.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतेहो भावधारा सुगम संगीताचा कार्यक्रम आता सादर करीत आहोत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया रीटा अगाटे यांनी गायलेलं हे गीत। शांता शेळके यांची रचना आहे, ऐकूया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. श्रोतेहो, दुपारचे 1:05 झाले. आता गीत बहार चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम सादर करीत आहोत. कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया शारदा आणि जयवंत कुलकर्णी यांच्या स्वरात ती मी नव्हेच या चित्रपटातील गीत. रमेश अणावकर यांची रचना आहे आणि सूरज यांचं संगीत.

0: कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी।

0: उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर

क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपण ऐकत होतात कार्यक्रम युववाणी. यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदीतून आणि 6:05 इंग्रजीतून दोन्ही बातमीपत्र आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया. नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए. विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं. नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है.
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं. ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे. श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है.
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है. लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही. इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है. नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा. त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है. योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है. बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है. फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मन्त्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मूकश्मीरस्य भगवती नगर आधारशिबिरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिणपश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्लीक्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तरपश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2020 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः, ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे

0: उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी

0: के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने

0: यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security,

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,460 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद है। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी, देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक

0: इम्पोर्ट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी।
0: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आंकड़े क्या बताते हैं? अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
0: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत वर्षों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारे जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलता है
1: जी।
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है, वो सब हुआ साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जो मैं कहता हूँ प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स है जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होगी, उत्पादकता बेहतर होगी। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है
1: जी।
0: ऐसा हमने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहां किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के

0: माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो और इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
0: जी,
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है। उसमें बड़े पैमाने पर अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
0: जी, और खरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: आकाशवाणी है। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin Sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: Shri Margi Mathu is one of the foremost exponents of Koodiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Mulikulam Kochikuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mulikulam Kochikuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Mulikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Mathu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarb Divya Pashupatastra Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Mathu. Kiratam, author Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूत सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kuta presented by Shri Margi Mathu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के एक ग्रेट कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: आज रात श्री अमल एंटनी चार सुगम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, Shri Amal Antony presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matr laukik prem nahi hai, balki woh jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet सुनते हैं।
1: The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams,

0: करता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: फर्स्ट लव इज एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इन द हार्ट। It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के

0: लिए प्रेरित करती है।
1: इन द कूल फ्रेशनेस ऑफ अ वृश्चिक डॉन एज नेचर अडॉन्स इटसेल्फ विद न्यू लाइफ, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर वीव ड्रीम्स ऑफ मेनी कलर्स। दे इंस्पायर अस टू ड्रीम एंड टू एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन।

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों

0: हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established.